0: अरे वृंदावन में बंसी बाज मोहे तीनों लोक,
1: बजाए चलो मोहे तीनों लोक,
0: तीनों में नाम बसे

ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मभिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् प्रेम स्वरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। हाथी गोरा पाल की, हाथी गोरा पाल की जय। कन्हैया लाल।

नगरी संभालो ओ मरी मैया, आज इथे सारे चपेंद्या आणि कन्हैया। हे लूट ही लेंगे माखन की कगरिया, आज बच न पाए कोई राह डगरिया।

श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः. ॐ वि प्रे टु गॉडेस लक्ष्मी माता, द कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, वि गिव ऑफ ऑल सिद्धि बुद्धि भुक्ति मुक्ति, वि प्रे टु हर.

प्रिराजलरुह शीरह द्विचाली कुलसन्नारस तवका वनराजय ववौ वायु सुखस्पर्श पुण्यगंधर्वः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तस्तत्र समिन्दता मामांस्यासन् प्रसन्नानि सारूणामसुरद्रुहं जायमाने जने तस्मिन् नेरुर्धुन्दुभयो दिवि जगहु किन्नर गन्धर्वास्तुष्टुभूसिद्धचारिणा विद्याधर्यश्च नन्ऋतुरप्सरोभिः समं तरा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुरान्वत।

जन्म भइल बा और ई कान्हा जी के जन्म पर पूरा हिंदुस्तान पूरा गोकुल नगरी आज कृष्ण जी के जन्मोत्सव मना रहल बा। त हम निशा उपाध्याय आप सब के बीच में एक सोहर के प्रस्तुति करतानी और आप सब भी झूमी पूरा गोकुल नगरी झूमता पूरा हिंदुस्तान झूमता कान्हा जी के भक्ति में कान्हा जी के सोहर पे।

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे मां सरस्वती, अपनी कृपा का हमें वरदान दो। हे जननी, हम बच्चे हैं, शिशु हैं, अज्ञानी हैं। मां, तुम्हारी स्नेहमयी स्निग्ध दृष्टि से हमारी बुद्धि जागृत करो, जिससे हमारी मेधा प्रतिभा स्मृति तुम्हारे अलौकिक तेज से चमकने लगे। 64 कलाओं की अधिष्ठात्री विद्यादात्री तुम अत्यंत दयालु हो। हे मां शारदे, तुम्हें हर विद्या अभिलाषी का शतशः प्रणाम। मां सरस्वती, तुम हर विद्यार्थी को कदम कदम पर सिद्धि का वरदान देती हो। अत्यंत शांत भाव से अपने उपासकों द्वारा अनेक तत्व और व्याख्याओं की चर्चा कर नए सिद्धांत विश्व में प्रस्थापित करती हो। तुम ज्ञान को बढ़ाती हो, दुनिया की विचारधारा को प्रगति के पथ पर ले जाती हो। हाथ में वीणा और ग्रंथ धारण करने वाली शुभ्र कमल पर आसीन मां सरस्वती, तुम कला और विज्ञान का पवित्र मेल हो। दूध और पानी को अलग करने का सामर्थ्य रखने वाला महान विवेचक श्वेत हंस तुम्हारा वाहन है। तुम्हारा वर्ण कुंदा के फूलों जैसा उज्जवल है और चेहरे पर मृदुस्मित हास्य शोभायमान है। कोटि सूर्यों के विद्या तेज से प्रकाशमान है। ऐसी मां शारदा देवी का कृपा पात्र होने की अभिलाषा से हर साधक प्रतिदिन प्रातःकाल विद्यारंभ से पूर्व प्रार्थना करते हैं। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै नमः। ये सरस्वती मंत्र पारायण करने से वो कल्प वृक्ष जैसा सिद्ध हो जाता है, ऐसा उल्लेख देवी भागवत में है। परम दयालु नारायण जब वाल्मीकि के राम राम के जाप से प्रसन्न हुए, तब नारायण ने गंगा जी के किनारे वाल्मीकि को सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी। उनके उपदेशानुसार वाल्मीकि ने सरस्वती मंत्र को सिद्ध किया और वे वाल्या से वाल्मीकि और वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि हुए। मां सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि आज हजारों वर्षों बाद भी रामायण की कथा सबसे अधिक सुनी और पढ़ी जाती है। ना मालूम ऐसे कितने विद्या रत्नों से जड़े हुए आभूषणों से मां विभूषित है। कितने सरस्वती उपासक उनकी कृपा से अमरत्व पाए हैं। प्रज्ञावर्धन स्तोत्र में शिव पुत्र कार्तिक स्वामी की स्तुति है, जो स्कंद पुराण से है। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 11 बार करने से विद्यार्थी की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है और वो मां शारदा का कृपा पात्र हो जाता है। जगतगुरु आदि शंकराचार्य विरचित शारदा भुजंगाष्टकम के नित्य श्रवण और पठन से हर विद्या अभिलाषी शिशु बालक तरुण और प्रौढ़ को उससे लाभ होगा। उसकी ग्रहण शक्ति स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी।

चर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणि रंजिताम् श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: राम बना, इसीलिए तो कहा है कि दौलत राम का बुरे काम का बुरा नतीजा।
1: क्यों भाई चाचा।